इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: Jerry B. Chinar Beats with Harjit Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज बरसों बाद भी

हाय, मैं तो आ चुकी हूँ, लेकिन मैं आ गई हूँ स्टूडियो में बराबर 12 बजे। 94.4 रेडियो चैनल पर आगे हो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स और रिपीट, क्योंकि बेटा ये है शो चुनार।

Jeremy. Çınar Beats ve Darce Diva. Only on Radio Çınar 90.4 FM.

Sorry. बीट सुन रहे बीट सोचन और बीट से सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मेरे लिए ये टाइम तो ऐसा होता है ना कि भाई आपकी जो भी बातें हैं ना, मैं हूँ ना, मैं सुनती हूँ आपकी बातें और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो मेरे लिए ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये जज्बात है, एहसास है, ख्यालात है और बस क्या ही कहूँ, इतनी राइमिंग हो गई ना। अब मैं और कुछ बोलूँ तो

अब वो कहते ना कि बस दो बातें और भी है ना, और भी बातें मुझे करनी है आपके साथ, अभी तो बस शुरुआत ही हुई, आगे आगे देखो बेटू होता है क्या। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, बट आप मुझे बताइए क्या थी वो बेहतरीन सी बेहतर सी थॉट जिससे आपने अपने दिन की शुरुआत की, एंड यू आर लाइक नहीं जी ये थॉट है ना, इससे हमारा दिन हमारी शुरुआत बहुत ही बेहतर बन सकती है। मुझे बताइए शो का हिस्सा बन जाइए, क्या है वो मज़ेदार सा किस्सा बन के शो का हिस्सा जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं और शो में शामिल होना चाहते हैं।

बट आई फील गुड. यस आई फील गुड बिकॉज ये जोश जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और आपके साथ से पूरा होता है. एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन रेडियो चुनार पर आप तक पहुँचती है और साथ साथ आप एंजॉय कर पाते हैं. बैक टू बैक सॉन्ग. बहाना नहीं करने की जरूरत है भैया. देखिए नंबर वो है जो आपके और हमारे दिलों को जोड़ के रखता है, यानी वो एक कनेक्शन जो छूटता नहीं है. एक ऐसा नंबर जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है. आई बिलीव इट्स वेरी प्रेशियस क्योंकि मैं आपसे बात कर पाती हूँ. इट्स 8899-04904. आप टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं और बाकी बाकी सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM.

शो चुना और बीच सब एंजॉय कर रहे हैं, बीच ऑन रिपीट दे सारी बातें, वाइब एंड ट्राइब और क्या कुछ चाहिए बॉस, और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड नेशनल हाईवे पे स्लो मोमेंट ऑब्जर्व किया गया है बिकॉज कई कई जगहों पे मेंटेनेंस चल रही है, बट आपको बता दें कि गाड़ियाँ अलो की जा रही है, यानी कि जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। बस बी केयरफुल, बी कॉशियस, बिकॉज हमें पता है कि ट्रैफिक पुलिस जब गाइडलाइंस देती है हमने उसका पालन भी करना पड़ता है। हमें पता है कि वो चीज़ें हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, जब हम ट्रैवल करेंगे हमें काफ़ी आसाइश होगी, हमें काफ़ी इजी लगेगा ट्रैवल, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होगा कि किस जगह पे क्या चीज़ है, कैसे हमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और किन चीज़ों को नहीं। सो हम भी डिपेंड करता है, अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे वो तो हमारा ही काम है, वो तो हमारे काम आएगा। डिपेंड करता है कि आपने सही चुनना है या गलत, क्योंकि सही चुनेंगे तो हीरो बन जाएंगे, वरना वही है कि हीरो बनने के चक्कर में भैया जी आप जीरो बन जाएंगे। लाल के लिए आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए और ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करें। गलत जगह पे ओवरटेक करना यानी कि बिल्कुल खतरों से खेलने वाला काम है, क्योंकि फाइन बनना पड़ेगा। वो तो वही है कि हम कहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी नुकसान हो। बी केयरफुल, बी कॉशियस, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबका ये फर्ज है कि हम ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और अपने फर्ज को बखूबी निभाए। पंजाबियों का काम नहीं है, ये तो हर किसी का काम है कि बैटरी को चार्ज रखना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहीं गलत जगह पे गाड़ी फंस गई ना, फिर तो भाई आज ही बड़ा नुकसान होना है। सो सही है कि दिमाग लगाइए, कोशिश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। कुछ कहना चाहते 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं चुनार बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट, हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

छोटन और बीट्स अनस्टॉपेबल एक च्योर एज अ डेली डोज हर रोज आपके लिए पेश हम करते हैं, ट्राई करते हैं। ये कुछ ऐसी दिल की बातें भी होती है जिन पे गौर फरमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक यू एंड मी, जो काफ़ी लगता है कि दूर दूर रहते हैं पर सच में जज्बात ऐसे हैं ना, हमारा कनेक्शन इतना गहरा है ना, कुछ भी नहीं छोड़ता है। ऐसा लगता है कि हर दिन आपसे बातें करूं और ये टाइम ख़त्म ही ना हो। अब हमारी ज़िंदगी में हमें समझने वाले बहुत सारे होते हैं और कुछ ऐसा टाइम आता है हमें लगता है ये कि हमें लोग समझते हैं, पर एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि हमें कोई भी नहीं समझता। बट ट्रस्ट मी, उसमें भी हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सच में हमें समझते हैं, बट समटाइम्स दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, दे आर लाइक कि नहीं, अगर हम इन्हें ये बात बताएंगे कि आप इम्पोर्टेंट है तो मे बी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसका वो मज़ा नहीं रहेगा। बट ट्रस्ट मी, कभी कभार बोलने की ज़रूरत भी होती है। समझना ये भी ज़रूरी है कि कभी कभार इंसान को कुछ चंद अल्फाजों की ज़रूरत होती है किसी की

जिंदगी में वो खुशियाँ वापस लाने के लिए, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा रंग भरने के लिए. सो इट्स आर ड्यूटी, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आगे वाले पर्सन को समझें कि उन्हें किस चीज़ की नीड है. सो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा या हो रहा है कि आपको लगता है कि कभी कभार लोग आपस में ना वो डिस्टेंस हो रही है, आपको लग रहा है वो चीज़ें बढ़ रही है, दूरियाँ आ रही हैं. बस हमारे कुछ अल्फाज जो है ना काफ़ी सा ज़रूरी है. सम वर्ड्स दे आर वेरी वेरी इम्पैक्टफुल एंड आई बिलीव कि अगर हम बोल चाल से वो चीज़ सही कर सकते हैं तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है. हम प्यार करते बट कभी कभार हमें बताना भी पड़ता है, हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा होगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा. आप बताइए, शो का हिस्सा बन जाइए. 8999049044 कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, सूचना और भी इसका हिस्सा बन जाइए.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: समथिंग डिफरेंट. इस साल का भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा ज़्यादा है आलिया भट्ट से, क्योंकि जब भी वो कैंस में जाती है वो बिल्कुल भी निराश नहीं करती.
1: आज की खबर.
0: So what are your thoughts, your expectations from Cannes 2026? मुझे बताइए. जो गाइस अब एंजॉय इट ट्रिपल नाइन. जी हाँ, 8899904904 पर आप कॉल टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं.
1: छोटी छोटी बातों को बदलेंगे ब्रेकिंग न्यूज में. आज की खबर. आज
2: बेकार जी. खबर
1: आज की खबर.
0: तो अगर आपके पास भी कोई है खबर और आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़, बट मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रेडियो चुनार आप पूरी दुनिया में सुन सकते हैं. आप ऐप स्टोर, आप iOS, अगर हम ओवरऑल देखें तो एप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारी रेडियो चुनाव 91.4 FM आपको डाउनलोड करके सुन सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं और हमारे साथ हमेशा कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में साथ दे सकते हैं. 8899904 रिपीट कर रही हूँ. टेक्स्ट व्हाट्सएप शो का हिस्सा बन सकते हैं आप, क्योंकि ये हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM.

0: next.
1: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम।

दबी यादें महक जाए, जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स. आप ढेर सारी बातें मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल नर्सेस डे. इस साल का थीम है आर नर्सेस आर फ्यूचर, एम्पावर नर्सेस सेव लाइव्स. यस, जब हम नर्सेस को एम्पावर करते हैं, उनकी काम को समझते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब उनके गोल को हम समझ पाते कि कितना इम्पॉर्टेंट है उनका प्रोफेशन हमारी सोसाइटी में, और कैसे वो शिद्दत से काम करते हैं, उनकी किस किस कंडीशन में काम करते हैं, एंड स्टिल दे आर लाइक कभी ना कभार उन्हें ह्यूमिलेशन का शिकार वो हो जाते हैं, और कभी कभार उनके काम को छोटा दिखाया जाता है. बट दिस इज नॉट राइट. लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड नर्सेस की वजह से हम अपने हेल्थ को बेटर बना पाते हैं, नर्सेस की वजह से हमारी जान भी बच जाती है, नर्सेस की वजह से हमें बेटर केयर मिल पाता है, नर्सेस की वजह से हमें एक हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट आती है. एंड आई बिलीव नर्सेस ही है जो हेल्थ केयर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है. इवन आई नो डॉक्टर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और अगर हम देखें उनके बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट है दोज आर नर्सेस. वो नर्सेस जो दिन रात रहती है हमारे लिए खड़ा रहती है, हमारी हेल्थ का ख्याल रखती है, बार बार चेकअप के लिए आती है और हमसे पूछती है आपको कैसा फील हो. सो दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग कि दैट वो हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं जब हमारा बहुत ही बुरा टाइम होता है, जब हमें लगता है कि हमारी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा वीक हुई है, जब हमें लगता है कि हम सही फील नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें केयर नर्सेस से ही मिलता है.

जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ही मेरा हाल है। मैं तो छोड़ के आ जाती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ और फिर से आपसे जुड़ जाती हूँ और आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए।

वैसे आपके मुताबिक नर्सिस प्रोफेशन कितना अच्छा है, और ओवरऑल अगर हम देखें नर्सिस में लोग किस हद तक, अभी हम देखें ओवरऑल जा रहे हैं, कश्मीर की बात करें, पीपल आर चूजिंग दिस प्रोफेशन एज अ करियर, और कितना ज़्यादा वो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, और कितना ज़्यादा वो चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को सर्व करें. सो वॉट अकॉर्डिंग टू यू, आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप अगर नर्सिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, या वो लोग जो नर्सेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, एवरीबडी, यानी कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमें रिस्पेक्ट देनी है, वी हैव टू पे दैट रिस्पेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रोफेशन एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, इनके रोल को हमेशा सराहना चाहिए.

शो चुनाव और बीस का टाइम खत्म हो चुका है, बट ये अभी है टाइम आप अपने फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। नंबर वही है 8999904904 पर आप कॉल टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। यानी कि ये एक आधा घंटा जो है ये पूरा अभी 1:30 से 2 बजे तक आप अपने पसंदीदा ट्रैक सुनेंगे। 8899904904 ये नंबर है, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप अपने फेवरेट ट्रैक्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप अपना फेवरेट ट्रैक किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 91.4 FM, शो म्यूजिक ऑन डिमांड आपके लिए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

4FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Tunar 90.4 FM. 4FM.

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी व्हाट्सएप
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी

0: खतरे में हैं, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। मैं हूं आरजे साहिल और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.1।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: thanks.
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम। रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

0: रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।
1: हाय हाय हाय हाय हाय चिकन।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम है।

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

बुजुर्गों ने

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करारा जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: किशोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की मुश्किल।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

ना रहा, क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, क्योंकि खुशी हो या दर्द, अब ये सब कुछ मेरा है।